जैसे सोना संभाल के

0: dich bei dir. Mira Sanskar.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग। अगर नाभिशान समापन मारने में फिर भी लाश तो रहते हैं ना, पसम होने के बाद नाम निशान कदम, तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिवान आर्डर करो, समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Thank you.

सबसे प्यारे ऐसे समझते हो या

0: नमस्ते, मेरा प्यार बाप से ज्यादा है कि दूसरे का प्यार ज्यादा है, मेरा कम है, ऐसे समझते हैं। हर एक यही कहता है ना, मेरा प्यार है, मेरा प्यार है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों, बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरा जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती, कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती, मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को, मुश्किल योगी या सहज योगी, नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है, कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी, और योग है क्या, याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता, योग लगन की अगन है, अगन कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती, लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकते, कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करे वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस पकड़े है, क्या करे पुराने हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते, बाप पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने कौन सा टीका उठाया, टीका उठाया कोई टीका, विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कि जो भी विंग्स है, चाहे ट्रांसपोर्ट का है, चाहे धार्मिक है, लेकिन जब प्रोग्राम करते हैं, कनेक्शन में आते हैं, उनसे लगातार कनेक्शन में रखते रहे, वो नहीं होता है। जब फिर प्रोग्राम होगा तब पत्र भेजेंगे, निमंत्रण भेजेंगे, फिर से आओ, लेकिन समय पर तो समय बाप दादा ने एक फॉरेन का समाचार सुना का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें लगातार हर सप्ताह जो भी आते हैं और अच्छा लगता है, जिज्ञासा उठती है, कनेक्शन होता है, लेकिन पक्के रिलेशन में लाने के लिए उनकी पीठ नहीं करते। 6 साल के बाद वो याद आ गया तो आ गया, कनेक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन हर एक की एड्रेस पर उनको कुछ न कुछ सप्ताह में बेचना चाहिए, जिससे उनकी पालना होती रहे। बिना पालना के फिर कभी नहीं भरा होता। इस वर्ष में कितने नजदीक रिलेशन में आए, समझा सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह देखने जाते, अगर कभी कभी वाले भी हैं

Ricotta.

छोटा सा फर्क है।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने पहले भी कहा है, हर एक बच्चे के जेब में सहयोग के नोट होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Jesse Saints. Peace.

Chador. Fellow. जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं से कर रहा है। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी। दिन से

स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

sick.

0: छप जाओ जैसे जाओ, जब तक जाओ तब तक मन को एकाग्र कर सको।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और 5 ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो तो जाने हो सेंटर पर कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे
1: भी और अपना अनुभव सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Master Sarveshaktivan.

0: ऐसा वरदान सदा याद कर, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रई बन जाएंगे। अभी समय के समित परमान वरदानों को हर समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे याद और सेवा

0: जवाब टॉप की स्टेज पर होंगे। जैसे कोई टॉप स्थान होते हैं ना, तो वहां खड़े हो जाओ। ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम। बाप दादा कहते हैं सेवा की, और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाओ। जैसे थक जाती है ना, तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाती है तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच सृष्टि चक्कर को देखो। सृष्टि चक्कर में टॉप स्थान कौन सा है? संगम, बारा की सुई टॉप पर दिखाते हो ना। सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। समझा क्या कर रहे हैं? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समय बुला रहे हैं? ऐसे ऐसे प्लान बनो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: योग में अमृत वेले बैठते मेजॉरिटी स्मृति में भी बैठते बाप दादा से शक्ति भी लेते हैं, लेकिन अभी बाप दादा ऐसे समय पर अभी ज्वालामुखी योग चाहिए, वो ज्वालामुखी योग अशांति हलचल बढ़ती है, इसलिए अपन इस समय की टॉपिक रखी है, एक परिवार। उसके परमान जब एक परिवार है तो अशांत आत्माओं को कुछ तो

0: अटेंशन खिंचवा रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

恋人。

0: सभी बच्चे आपसे भी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करते हैं।
1: अमेरिका वाले गुड मॉर्निंग करते होंगे, यहाँ वाले गुड इवनिंग और गुड नाइट करते हैं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्रह्मांड सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गया, क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का बोझ लेने के लिए, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना, बोझ दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया, मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक। और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तीसरे जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया? अच्छा लगता है बोझ? सबसे सुखम बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर तो कदीता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो, हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं जलाया भी, ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करती है, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए संस्कार, पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Peace.

Eşref de Bolu Arsam.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो

हर जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है। उसमें जरूर

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी जान से लेती है, खुशी नहीं कमाना। माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय को सफल कर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जी।

Sempre.

前

परिवार के

Sí.

三个米修和杯，安保。

एक बच्चे के प्रति दिल की दुआएं देते हैं। बच्चे

de Deus.

0: నిఘాత్మకు.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: व्यक्ति बिगड़े मट्टी है ना, मट्टी मट्टी में मिल जाती। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई कौन से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, सने नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छे। तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता। यहाँ कहते हैं किसमें सेवा की विशेषता हो, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा सने शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प भीज जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा। ये भी आकर्षण है व्यक्ति के, क्यों सेवा की विशेषता का दाता कौन, वो व्यक्ति या बाप देता है, कौन देता है, जो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते, कौन को देखते, सेवा को देखते, वो व्यक्ति भी लेता है, दाता नहीं है। बिना बाप के बनने के उस व्यक्ति में ये सेवा का कौन या विशेषता आ सकती है, आती है कि अज्ञान से ले आता है वो विशेषता, अज्ञान में होती है क्या? ईश्वरी सेवा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Ciao।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों का जमा का खाता देख रहे थे। पहले भी सुनाया

क्षमा करना, ये एक कथा है। दूसरा

और सर

तीसरा खाता है। पुण्य का खाता। पुण्य के

सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में सम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Amor, creí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Lecken. Beats.

Shit.

one kiss.

Oh no, Corby.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोट में है, सेंटर्स पर है, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक। Some

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय

Sangalam. Viklapnai. Vedat Sangalam.

så där vi så nära. Just so jealous.

So

0: sello eterno. Naya sochna. Naya karna. Uski avshakta hai nahi. Jo baap ne kiya, wo follow father. Sejena.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज के दिन बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा आज अपने दिल में दृढ़ता को लाके ये दृढ़ संकल्प करो कि हमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय सबका रजिस्टर देखते हैं ना, उसको बचाना अर्थात समापति का समय समीप लाना।
0: आप सुन रहे हैं टीवी रेडियो, शांति की धुन है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी, क्यों के ड्रामा में समस्याएं भी आती है और सफलता। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय होती है वो समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देता, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय तो किसके ऊपर विजय बनता, परिवर्तन करने में एक सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती, हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अटोल अचल बन जाते। ये निश्चय रहता है कि मैं कल पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बनाता बने हो, और पर कलम के बाद भी मैं बनूंगी, तो ये नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता, फखर रहता नशा रहता आवश्यक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दुनिया के हालतों को देखते हुए अब अपने सुख दे दो।

मिस्टर दादा बना

Shut up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Tiens.

出真的。

बात करने में सहज योग।

रीजे है, लेकिन बीच के साथ सने पानी है। अगर बीच में पानी नहीं मिलता तो फल सुनैया।

मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने बना देते।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरद

的伤感了。阿婆妈妈，我阿婆妈妈，阿婆你的人，其实他都没有。विशेषताओं को अपने विशेषता समझ।

0: संकल्प और मेरे पद के अशुभ संकल्प मैं कब नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले परमात्म प्यारे बच्चे ने में तो जो निमित आत्माए हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों,

Eso.

आसमान कितना बड़ा है, चले गए अनादि स्वरूप में।

चमकती हुई दिखाई दे रही। देख रहे हो जैसे आकाश में भी सितारा विशेष चमकता।

Yeah, fuck.

Duke and me. अपना स्वरूप देखो।

Nej, sönder.

सर्वप्राप्ति स्वरूप।

سروب.

con sa yoga gear.

Hogy szarovkodik rá.

ചൈത്ത റബ്ബിതയായി ചൈ കുറുവനേ.

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जल्द। देखो अपना स्वमान, क्यों कसो

जीवन में स्वयं मालिक आप बच्चों में।

Satan. Bob se prapto.

sabi. Master Sarvashaktiman ban gaye. To check karo. Y sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
3: जी।

ahora.

top.

خوشی.

0: उसके लिए
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक गाना भी करो इसकी, अपने बोल की वैल्यू रखो, आपका बोल जैसे महात्माओं को कहते हैं ना, सत्वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्वचन अर्थात कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन किसको चलते फिरते कह देते हो हंसी में, ये तो पागल है, ये तो बेसमझ है। ऐसे कई शब्द बाप दादा अभी बोल गए हैं, लेकिन सुनते हैं तो ये ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द

Listen.

¿Quién impoló? Mira tu abajo.

Apple.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Cushy.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बार कहते हैं बाबा आज वो चैन बाबा भूल गए, बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए, एक जन्म और छोटा सा जन्म 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए, इसीलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया को कभी कभी खातरे भी कर देते, कहते हैं हम समय पर हो जाएंगे ध्यान, अभी तो टाइम पड़ा है न थोड़ा, अभी टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके खातरी चाय पानी पीती रहती, माया के फॉलो फादर की बजाय फॉलो माया कर लेते। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो होता ही है ना, ये माया कोई फॉलोअर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं तो सदा शिकल देखे, तो कैसी शिकल देखे, कभी कभी शिकल अच्छी नहीं होती, सोच में सोच बहुत करते, क्या करूं ये करूं नहीं करूं, फायदा होगा ठीक होगा, सोचते बहुत, बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों, सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहरा जाती है, तो बैठ जाओ, फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इस तरफ वाले इसी है। अच्छा,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और चलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, ऐसे ही

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

बन सकते।

tu api. Sikanme. Jangan.

अपार संसार है। दूसरा न कोई, इससे एकाग्र

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को,

接根的在血里给什么

नोट करना, सुबह को उठते चेक करो, सब

che ci trome. Sada. Tra beltace. Tua por me. Caira.

che se bio shit it guys I'm shit.

foarte mare. Vai.

Sipi, siate sata noki atarpar sata nakame or sata kopyoga karnaya karana siate. इसलिए आज के भाव समान बनने के दिवस पर विशेष भाव दादा अंडरलाइन करा रही है कि साधनों की का अनुभव बहुत किया जो किया वो भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना अर्थात साधन बहुत दिए लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे होते हुए दूर रहना Okay.
Strisciane. Cioè, padam pati bieliken. E cioè, se vuoi parigiane, vai un mandalme. Found.

someone. Fishes.

Wishes on the

0: společný sad nám jeden nevadí. Hotelový.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Simon.

Voll Knowledge.

sick.

Sin.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा यही चाहते हैं, अब थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारंभ स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारंभ वाले बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ, अभी

Absehen. Lehren. Lete Bildung.

Oh.

0: chicken. Oye, Febri, Shantina. Oye, Rem, del Buena. Oye. Conozca, Señor, que tina.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वरदान काम में तब आएगा जब रोज अमृत वेले। इस वरदान को रिवाइज करें, गिफ्ट को रिवाइज करेंगे तो बाप दादा यही गिफ्ट दे रहे हैं, एक कदम हिम्मत का कभी नहीं छोड़ना। तो बाप दादा हजार कदम

0: पैसे नहीं देखना, देख के बाबा मदद करता है या नहीं, इम्तिहान नहीं लेना। बंधा हुआ है बाप, आप भी बंधे हुए हो, बाप भी बंधा हुआ है। तो इस गिफ्ट को रोज बार बार देखना, कोई बढ़िया गिफ्ट होती है उसको बार बार देखती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज अमृत वेले देखना और कर्म करते कर्म योगी जीवन में भी बीच बीच में रिवाइज करना। अच्छा, गिफ्ट ले गिफ्ट दी, अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा आज भी सभी बच्चों को चाहिए

not submissive. कहीं बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर लेकिन बाप दादा पूछते जवाब तो आप जवाब तो अभी तो श्रम

raro.

Jestliže चल रही है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण, लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रालंबित बना रहे आवश्यकता अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवारता दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाते हैं लौकिक काम करके, थक के आते हैं क्या करें। नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादियों या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वो हाथ उठाओ। लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते, हाँ उठाओ हाथ। अच्छा बहुत अच्छा। पांडव पीछे बैठे अच्छा है। आप निश्चिंत रहो, नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे। जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं। करा बना हार करा रहना, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Tchau.

नहीं होके पढ़ेंगे।

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपकी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन, कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस का साधन कार्य करती है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगी। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा, जैसे ये वायरलेस या टेलीफोन, ये टीपी, ये जो भी साधन है, कितने साधन निकल गए, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। ये आधार खत्म हो नहीं है, ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट, जो भी सुख के साधन है, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर। तो क्या आपकी अध्यात्मक लाइट, आत्म लाइट, ये कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सके, अभी क्या है?
2: भी कोई मिसिंग है जो पढ़ नहीं चाहिए।

मनोबल की बड़ी मेहमान। ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा What?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद मर्ज कर।

बच्चों को देख रही है और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश रहती जो कभी कभी खुश रहती और कोई सदा खुश रहती, सदा खुश रहती।

और बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता।

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: भी बहुत उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बहुत उतर जाए तो अच्छा है, यहाँ आया है क्या? वाह बहुत उतरा, ऐसे होता है ना, किसकी मेहमान करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो, हाय ये मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वभाव संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं, देखती है ना इसने ये किया, इसने ये कहा, सफलता दूर हो जाती, देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ जी, और बहुत अच्छा, ये तो शब्द हर कार्य में यूज करो। स्वभाव वैरायटी है और रहने भी है। स्वभाव को देखा तो सेवा कदम बाबा करा रहा है। बाबा को देखो, बाबा का काम है, इसकी ड्यूटी नहीं है बाबा की। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना, तो स्वभाव देखने नहीं है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया, ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रख और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेला है छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
2: भाइयों को बुला रहे हैं,
1: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ जो लक्ष्य रखे, दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन। ऐसा वर्तक के स्वरूप देख फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि सेवा वा करम और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करा वन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी
4: सबसे

0: और दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं है। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतने जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाती है, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता। निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता, अपमान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाती है तो खुद नहीं बक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

महीन में बन यही बाप कहते हैं आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी बाप को टाइम मिलता है तो क्या दिल में होता है, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, अब बच्चों को टाइम मिलता तो मेरा बाबा ऐसे है ना, ऐसे है, हाथ उठाओ। अच्छा, बोलने की चीज ही नहीं है, कितना भी बोलने की कोशिश करो लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: I'm sorry.

escucho.

ちゃん。

शरद का समय नहीं होगा, अब प्यास करे लगाओ फुल स्टॉप और हो जाए आश्चर्य की बात रहा। Peace.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है। एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: करना हार है, ये करावन हार।

किसका नहीं मानता तो करावर आहार आत्माओं, ये कर्म इंद्रिया करनार करावनार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप शुरू में ये अभ्यास किया जो रोज समापति के समय इन कर्म इंद्रियों की राजदरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होंगी तो रोज दरबार लगाते थे और करावनार मालिक बन हर कर्म इंद्रियों का समाचार लेते थे देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया तो आपको भी करावनार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राज है। ये कर्म इंद्रिया साथी है तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष संस्कार स्वभाव को संस्कार को इनों का क्या हाल रहा और फौरन चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा बन करनार कर्म इंद्रियों से, करावनार बन चेक करो, नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण सी अपने स्वमान के सीट पर सेट नहीं रहते, बिना सीट पर बैठने वाले के ऑर्डर कितना भी करो
आने वाले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण नहीं होता है।

साधारण नहीं हो। ब्रह्मा बाप को जाना, भले देखा नहीं लेकिन जान तो लिया ना। मेरा बाबा जी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

しい。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप और बच्चों का एक दिवस जन्म, यही वंडर है। साथ की निशानी है।

इसलिए ये अलौकिक अवतरण का जन्म दिवस

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य ही सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। अभी रिजल्ट में देखा कि बीच बीच में करने एकाग्र चाहते हो लेकिन बीच बीच में भटक जाते। एकाग्रता की शक्ति

शुद्ध नहीं करनी पड़ती।

ます。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधना में अटल रहे।

0: Überlappschicht, diese fast fritico prabt carreie to sona bramaki diag kika.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तीन मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा। अगर अपन ने उमंग उत्साह से किया तो मजबूरी से किया तीन मास पास करने हैं, फिर तो सदा नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: अच्छा है, कुछ सोचना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पहले बाप दादा अपना संकल्प सुनावे, पहले मधुबन चाहे नीचे चाहे ऊपर निर्विघ्न बनना चाहिए। Sí.

c'est ça.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाबा एजुकेशन का छपा है और यूथ का छपा है,
2: यूथ
1: और एजुकेशन,
2: एजुकेशन चलो
1: सभी का भी छप रहा है कहते हैं, जिला जिला
2: छपना चाहिए क्योंकि कोई भी आते हैं तो लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताब होने चाहिए जो कोई भी
1: जो नहीं सकता।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज में ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर रखो कि माइक बन के आवाज करे। ऐसे माइक चाहिए, ऐसा माइक नहीं जो अपने समाज में ही करे। नहीं, माइक तो बड़े आवाज वाला चाहिए। अच्छा,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: I'm sorry।

0: किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है। सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हो ही पड़ी। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ। तो झूठ को झूठी कर दो ना, पढ़ाते क्यों? तो आज बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये का गीत समाप्त। अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा का गीत गाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये सब साधन आप बच्चों की सेवा के सहयोग के लिए निकले। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते हैं। सेवा का साधन समझ के यूज करना सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। आत्म में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बनाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। कि बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के फटाफट कर रहे हैं। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिने का। सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है। और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। नहीं, टाइम नहीं मिला, सारा दिन बहुत बिजी रही। बाप दादा ये बात नहीं मानते, क्या एक घंटा साधन को अपनाया, उसके बीच में क्या 5-6 सेकंड नहीं निकाल सकते, इतना है कोई बिजी? ऐसा कोई बिजी है जो 5 मिनट भी नहीं निकाल सके? 5 सेकंड चलो, है कोई ऐसा? है, निकाल सकते हैं, बोलो पांडव, निकाल सकते हैं तो निकालो। बाप दादा जब सुनते हैं आज बहुत बिजी, बहुत बिजी, शिकल भी बिजी कर देते हैं। बाप दादा मानते नहीं है, जो चाहे वो कर सक, अटेंशन कम है। जैसे वो अटेंशन रखते हो ना, 10 मिनट में ये लेटर पूरा करना है, इसीलिए बिजी होते हो ना टाइम के कारण। ऐसे ही सोचो, 10 मिनट में ये काम करना है, वो भी तो बनाते हो ना टाइम टेबल। इसमें 1-2 मिनट पहले से ऐड कर दो, 8 मिनट लगना है, 6 मिनट नहीं, 8 मिनट लगना है। तो 2 मिनट साधना में लग, ये हो सकता है, हो सकता है। इससे पूछते हैं गायत्री से, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, तो अभी कभी नहीं कहना बहुत बिजी, बहुत बिजी। बाप दादा चेहरा भी देखते हैं उस समय, फोटो निकालने वाला होता है। कितना भी बिजी हो लेकिन पहले से ही साधन के साथ साधना का समय ऐड करो। होता क्या है, सेवा तो बहुत अच्छी करते हो, समय भी लगाते हो, उसकी तो मुबारक है, लेकिन स्व उन्नति या साधना बीच बीच में न करने से थकावट का प्रभाव पड़ता है। उठी भी थकती है, हाथ पांव भी थकता है, और बीच बीच में अगर साधना का समय निकालो तो जो थकावट है ना वो दूर हो जाए, खुशी होती है ना, खुशी में कभी थकावट नहीं हो, काम में लग जाते हो। बाप दादा तो कहते हैं काफी समय एक्शन कॉन्शियस रहते हो, होता है ना ऐसे? एक्शन कॉन्शियस की मार तो मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार और एक्शन कॉन्शियस हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो हो सकते हैं, हो सकता है। हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज चलाना है या मारा हुआ ठीक है, चलाने की शक्ति है शक्ति
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी दिल से विश्व सेवा प्रेत झंडा लहराने वाले बच्चों को बाप पदम पदम कुना बाबा।

जानते हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सामने जाते रहे।

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी खुश राजी और कदम आगे बढ़ाने वाले निमित्त बने हुए फरक है।

siya eh, na barbaro. Lekin, putsi or babka, but

0: Все-таки папа, типа. И папа Арбатюка.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है

जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह

क्या हर एक बच्चा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सोचते हैं एक सौ की माला में तो जो निमित बने हुए बच्चे Jay.

Charlando.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुश्किलता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया से इशारा करो गेट आओ और अपने को गेस्ट हाउस से अब तो खर्चा नहीं, घर के निजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चल
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: कर दीजिए। सुनते बनाते
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार
2: किसी में भी चार में से

0: भी स्वभाव परिवर्तन की योग में भी अचल रहने की योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती। तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या? जिस भी समय आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव के सीट पर सेट होते हो किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो तो उस समय मेहनत करनी होती है। नेचुरल अनुभूति होती।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: I'm

见你。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं। एक

0: निमित्त बने हुए हैं और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कैसा भी कोई हो, लास्ट हो उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो को स्वमान के दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो। एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लाओ, उसके गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? जो लक्ष्य रख गया है सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन किटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है। लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए। बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते, वो भी समय आएगा। जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। संग दोष पे नहीं आओ। आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, संग दोष पे नहीं आओ। कहते मेरा पापा, कहता है मेरा पापा और करता क्या, इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो। फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्ची दिल को साफ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय के पर

vendí la carne, chao.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

my

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

से खुशी लेके आप भी खुश रहो और दूसरे को भी खुशी दे सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मन में बहुत आते, ये तो होता ही है।

0: आप अलग मेरे मन में आके रोक कर कहते हो, ये समझदारी है समझदारी।
1: Thank you.

Put attention, Tina.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Gotcha.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप अपने विशेषताओं को जानते हो? जानते हो? हर एक अपने विशेषता को जानते हो? जानते हैं? तो नहीं करते ना।

विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अपमान का रूप बन जाता, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद ब्राह्मण जीवन में आने के बाद पाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती है, क्योंकि पाप का बनने से लगाना।

much nesse.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है भैया, क्या होगा उसका भैया होता है, अच्छा ही होगा आपके लिए, अच्छा होगा दुनिया के लिए, कुछ भी हो जाए स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि को लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। साखी बनो और सदा अपने कोई भी हल चलो सा।

dead

Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अश्वगंधा खांसी के लिए है।
4: दादी गए थे बगीचे में, दादी 3 दिन रहे उसी कारण से, और उसी टाइम में दादी ने इन लोगों को दृष्टि ज्ञान दिया था। अभी पक्का हो गया।
3: गुलजार दादी गई थी इनों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
2: ये तो कल पहले इनका भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो हैदराबाद में दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Дядькаро. Спели смрти си.

Шатера. Дельсипеля. Санейка. Шептакон Саникла. It's...

क्या प्राप्तियां होती हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे कहते हैं कि हम कई बार अनुभव करते हैं कि कभी कभी जब कोई शक्ति चाहती है ना, तो उस समय पर शक्ति नहीं आती। वैसे शक्ति है, लेकिन समय पर कभी शक्ति को इमर्ज करते हैं ना, तो भी नहीं आती। है मास्टर सर्वशक्तिमान, टाइटल क्या है आपका? मास्टर सर्वशक्ति।
2: Masters.

ऐसे दूसरा कोई कहे तो मानेंगे क्या? तो आपकी सीट है मास्टर सरस्वती माँ, उस सीट पर सेठ नहीं होते, तो आह्वान करते भी शक्ति समय पर नहीं आती। इसके लिए बाप दादा ने बार बार कहा है, अपने मन को बिजी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे, खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वो अगर ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता, थोड़ा सा सोच विचार कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Dystopia.

Peace.

सफलता।

सफलता मुहूर्त बनो, क्योंकि

सफल

Saf.

बीमारी का नाम नहीं। डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसका फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में समझदार शक्तिवान बन जाते हैं, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते। सफल कर

0: सोता ही प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपर्क हुए लेकिन स्वप्रत व विश्वप्रत कितना सफल किया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाए के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा आपके हाथ में, और देखा जाता है ऐसी चीज है जो जैसी है धूप में आप चलते हो ना, धूप में चल के देख रहे तो आपकी परछाई आगे जाती है। उसको पकड़ने की कोशिश कर पकड़ी जाएगी और आप पीट

Hey.

من نہیں بن سکتا اور کچھ نہیں مانتا۔

Ay.

Você é só um pano.

इसी सदाई मच के लाऊं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब पी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे। कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो हलवेला होता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपर ही, तो पेपर का तो चलेगा, सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और कम कीमत सबसे ज्यादा है मूल्य। शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ, और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं अखबार वाले आएंगे, खुद ही डालेंगे टीवी में, दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे

0: három aronga. Tok arbába. Kusim naisteri. Szikoly kedél. Mirva mahot valukasik.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मेजॉरिटी बच्चों का फर्श का पोता मेल देखा, क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा, बाप दादा ने देखा कि बेटा ने और समाने की शक्ति कम है, मिटाते भी है, उल्टा देखना सुनना सोचना बीता हुआ भी मिटाते है, लेकिन जैसे आप कहते हो ना कि एक है कॉन्शियस दूसरा है सबकॉन्शियस, मिटाते हैं लेकिन माना के प्लेट को स्लेट को कागज को कुछ भी को पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? उसका कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। समय अनुसार समा भी लेते लेकिन फिर समय पर निकल आता, इसलिए जो चार शब्द बाप दादा ने सुनाया वो सदा नहीं चलते। अगर मानो बिल्कुल मानक की प्लेट को कागज को पूरा नहीं मिटा तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो स्पष्ट होगा, अर्थात सर्वगुण सर्व

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सोच के कहो, नहीं तो ऐसा एक